आए त्रिग जीवे त्रिग जीवास जिन हर जन सतगुर संगत पाई तिन तुर मस्तक लिखिया लिखास धन धन सत संगत जित हर रस पाया मिल जन नानक नाम प्रगास राग गुजरी महला पंजवा काहे मन चित वह उद्दम जा हर हर जियो परिया सैल पत्थर में जंतु पाए ताका रिजक आगे कर तरिया मेरे माधो जी सत संगत मिले सो तरिया गुर प्रसाद परम पद पाया सो के कास्त हरिया रहाव जनन पिता लोक सुत बनिता कोई न किसकी तरिया सिर सिर रिजक संभाहि ठाकुर काहे मन पाव करिया उड़े उड़ा वैसे को सा तिस पाछे विचरे शरिया तिन कवन

एक ओंकार सतगुर प्रसाद सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर अगमा अगम पारा सब त्यावै है सब त्यावै तुझे हर सच्चे सिर।

गोविंद मिलन किए तेरी बरिया, अवर काज तेरे किते न काम, मिल साध संगत पर केवल नाम।

एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह पातशाही दसवीं चौपाई पुनराशिष का काटा सीसा श्री अस्केत जगत के ईसा पोहपन ब्रिष्ट गगन ते पई सब हिन आन बधाई दई धन्य धन लोगन के राजा दुष्टन दाह गरीब निवाजा अखल भवन के सिरजन हारे दास जान मोहिले उबारे कव्यो बाच बेनती चौपई।

तुम मैं मिलत देह तर सब हूँ, जेते बदन सृष्ट सब धारै, आप अपनी बूझ उचारै, तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत भेद भेद अर आलम, निरंकार निर्विकार निर्लंब, आद अनिल।

कृपा करी हम पर जगमाता, ग्रंथ करा पूर्ण सुब्राता। किल बिख सगल देह को हरता, दुष्ट दोखियन को शय करता। श्री अस्तु जप पय दयाला, पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला। मन बांछत फल पावे सोई, दुख न तिसै व्याप्त कोई अड़ेला। सुनै गुंग जो याहि सुरस न पावई, सुनै मूढ़ चित लाए चतुरता आवई। दुख दर्द पौ निकट न तिन नर के रहै, हो जो या की एक बार। चौपई को कहै चौपई, संबत सत्रह सहस पणिजय, अर्ध सहस पुन तीन कहिजय। भाद्रव सुदी अष्टमी रविवारा, तीर स्तद्रव।

राम रहीम पुराण कुरान अनेक कह मत एक न मान्यो सिमृत शास्त्र वेद सब बहु भेद कह हम एक न जान्यो श्री असपान कृपा तुमरी कार

कनिक कटिक जल तरंग जैसा जपै हम नाम पाप करंता अहे अनंता पतित पावन तेरु नाम कैसे हुंता। तुमरी शरण तुम्हारी आशा

बोलो जी वाहिगुरु। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वाल। श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याए। फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास हुई सहाय। अर्जुन हर गोबिंद नो सिमर श्री हर राय। श्री हर कृष्ण त्याई जिस डिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरे है घर नौन दयावै ताए। सब थाई हुए सहाय। दसवां पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई हुए सहाय। दसां पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान तर के बोलो जी।

जग और न जाहि महातम में अवतार उजागर आन कियो तिनके दुख कोटिक दूर गए मथुरा जिन अमृत नाम पियो एह पद तुते मत चूकै हरे मन भेद विभेद न आन बियो प्रताच हृदय गुर अर्जुन कै हर पूरन ब्रह्म निवास लियो प्रताच हृदय गुर अर्जुन कै हर पूरन ब्रह्म निवास लियो सो कहो तल गुर सेविय एहनिस सहज

जो किछ है सो तेरा। कदों झोलियां भर दियां ने जदों एडी निम्रता ते एडा प्यार आ जा। महाराजा रणजीत सिंह किन्ना सत्कार गुरु दा करदे ने, अपने घर दे विच सब तो उच्चा स्थान गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दा। जदों भी अपने महलां विच आंदे ते सब तो पहला गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दे दर्शन करदे ते फिर अपने बच्चियां नूं मिलदे सन। किते भी कार विहार ते जाना ते पहला सतगुरां कोलों आग्या लैंदे सन। एक दिन रणजीत सिंह जी बहुत भारी जंग लड़न वास्ते जा रहे ने ते जान तो पहला गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज अगे गल विच पा के पल्लू अरदास कर रहे ने, सतगुरु मेरे विच कोई सियाणप नहीं, मेरे विच कोई बल नहीं, तुसा बख्शिश करनी है मेरी जित हो जावे। इतिहास विचों की सोझी मिलती है, लखां दी फौज ते एक पासे महाराजा रणजीत सिंह। आज इस मैदानी जंग विच रणजीत सिंह दी जित होई है, कोई भी बैरी अगे ना खलोया। बड़े बड़े राजे महाराजे रणजीत सिंह दी बड़ी शोभा कर रहे ने, रणजीत सिंघा तू ते कमाल कर दिती है, एडी तेरे विच सियाण किड्डी वड्डी जंग जित ली है। आ जदों हर एक ने शोभा कीती ते रणजीत सिंह दे मन विच भी मैल आ गई भी सचमुच ही मैं बड़ा वड्डा योधा, मैं किड्डा वड्डा काम

सत्संगियो जंग मंगयाणी दी गल है पक्षतान दी ए साखी। सतगुरां ने भाग लाए इहदे घर पुत्र होया। आपां संसार विच तकिया है दात प्यारी विसरिया दा तारा। जदों दातां मिल जाण ते देण वाले नूं भुल जांदा है। मंगदा गुरुद्वारियों है ते खुशियां ठेकियां ते कलबां विच जाके मनांदा है। आ पुत्र होया गुरु नूं भुल गया। शराबां दियां पेटियां खुल गईयां ते अपने मित्रां नूं शराबां ते कबाबां दे नाल खुश कर रहा है। समां बीतदा गया, पुत्र वड्डा हो गया।

एक दिन अपने बाप नू धक्के मार के बाहर कढ दिता, तू मेरा प्यो नहीं तू मेरा दुश्मन है। नौ भी किड्डे बोल कबोल बोलती है।

0: शाहं नमो पूपूपे
1: नमो दानदाने नमो मानमाने
0: नमो रोग रोगे नमस्तं सनामे
1: नमो मंत्र मंत्रं नमो चंत चंत्रं
0: नमो ईष्टिष्टे नमो तंत्र तंत्रं
1: सदा सच्चिदानंद सर्वं परनासी
0: अनुपे अरूपे समस्तु निवासी
1: सदा सद्दा बुद्धा बृजकर्ता
0: अदो ऊर्ध्वर्धनं महर्ता
1: परम परम परमेश्वरं प्रोक्षपाल
0: सदा सर्वदा सिद्धदाता दयालु
1: शेदी अभेदी नामं काम
0: समस्तो पराधी

0: जतर ततर विराजे अब तू उतरो पर साल
1: नाम धाम न जात जाकर रूप रंग न रे
0: आप प्रभु धार मूर्ता जो नाद से
1: देशोर न पेश जाकर रूप रख न राग
0: जतर ततर दिशा बिछाओ फैलियो अनुराग
1: नाम नाम खाम

0: त्वा प्रसाद कथते के आछज दिसे के आप जपिसे
1: के आकाज करमे के आपंज परमे
0: के आबिज लोके के आदित सोके
1: के तूत भरने के प्रभुत करने
0: के राजन प्रभाहे की धर्मंग तुजा है
1: के अशोक भरने के सर्वा परने
0: के जतन कृति है के छत्रन छत्री है
1: के ब्रह्म

0: अमित है, सुनित है, जात है, अजाद है, सर्वहंता सर्वंगंता,
1: सर्वंख्याता सर्वंज्ञाता,
0: सर्वंहर्ता सर्वंकर्ता,
1: सर्वंप्राणं सर्वंत्राणं,
0: सर्वंकर्मं सर्वंतर्मं,
1: सर्वंयुक्ता सर्वंमुक्ता,
0: प्रसावल छन्त्वा प्रसाद, नमो नरक नासे सदैवं प्रकाशे,
1: अनंतं स्वरूपे अपंगं प्रभूते,
0: परमात्मं परमाथे सदा सर्वसाध्ये,
1: अकाश रूपे निर्वाप प्रभूते,
0: अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकामे,
1: निरपंगी स्वरूपे सर्वंगी अनुपे,
0: न पुत्रा न पुत्रा न सत्रा न मित्रा,
1: न दाते न माते न जाते न पाते,
0: साकं सरीक है अमितो अमीक है,
1: सदैवं प्रवाह अजय है अजा है,
2: भगवती चंद प्रसाद के जाहर जहूर है कि हाजिर हजूर है।
1: हमें शुभ सलाम है।

0: समस्तुल प्रणामे समस्तुल प्रणासे
1: अतंजुलनामे समस्तुल निवासे
0: कामन विभूते समस्तुल स्वरूपे
1: भूकर्म प्रणासी सुतर्म प्रभूते
0: सच्चिदानंद सत्वन प्रणासे
1: करिमल को निंदा समस्तुल निवासी
0: अजाय विभूते गजाय गनी
1: हरियम करियम।

0: सुरंग सवारे कौन
1: रंग सुरंग से कौन
0: को जात निवारे भारी पुजान के पू बली विद्या वशिष्ठ जात बिचारे
1: ते पे तो कापे भूपति अंत को ना गई पाए पधारे
0: जीत फिरे सब देश दिशान को बाजे टोल मृदंग नगारे
1: गुंजत गोड़ गजान।

0: चार्ज करते करिए ऐसा बैरन को आज सगरिए
1: पूरन होए हमारी आशा तोर भजन की रहे प्यासा
0: तुम्हें चाट कोई अवर ना त्याओ जो बरचा सो तुम ते पाओ
1: सेवक सिख हमारे तारिये चुन चुन सत्र हमारे मारिये
0: आप हाथ दे मुझे उबरिए मरण कार का त्रास नवरिए
1: पूजो सदा हमारे पच्छा सिरिये तुझो करियो रक्षा
0: लाख लय मोय राखन हारे।

0: राजा हुए बैठा को सिमट पर संकीर गेठा
1: सगली सृष्ट दिखाए चंबवा जुगा स्वरूप से अब
0: अबरचा मेरी तुम करो सिख बाण सिख संगरो
1: दुजते उठवा तुट पाता सगल मलेश करो रणकाता
0: जे सुष्ट सरनी परे तिनके दुष्ट कित मरे।

0: माता के उदर में प्रतपाल करे सो क्यों मनो विसारिये
1: मनो क्यों विसारिये ए वरदाता जे अगर मैं हार पहुंचावे
0: जिसनु कोई पोहे न सकी जिसनु अपनी लिव लावे
1: अपनी लिव आपे लाए गुरमुख सदा संभालिये
0: नानक ए वरदाता सो क्यों मनो विसारिये
1: जैसी अगन उदर में तैसी बाहर माया
0: माया अगन सब इको जेही करता खेल रचाया
1: जात इस पाणाता जन्मया परवार पला पाया
0: छुड़की लगी तृष्णा माया अमर वर्ताया
1: ए माया जित हर विसरे मोह बुझे पौ दूजा लाया
0: है नानक गुर प्रसादी जिना लिव लागी तिन्नी विचे माया पाया
1: हर आप मोलक है मोल ना पाया जाए
0: मोल ना पाया जाए किसे विटो रहे लोक विलाए
1: ऐसा सतगुर जे मिले तिसनु सिर सोपिए विचो आप जाए
0: जिसदा जियो तिस मिल रहे हर वसे मन आए

0: चाहत हो तुम ते के चाहत हो चितने सोई की जय।
1: सोत हिरण पीतर जूझ मरो के साथ भतीजै
0: संत सहाय सदा जग माए कृपा कर श्याम हे बर दीजै।
1: सिवा बर मोहे है शुभ कर्मन ते कब हूं
0: ना डरो और सो जब जाए लरो निश्चय।

सेवकती संतोख जिन सच्चो सच त्याया उन्नी मंदे पैर न रखे उन कर सुकर धर्म कमाया उन्नी दुनिया तोड़े बंधना न पानी थोड़ा खाया तू सिसी अगला नित देवे चढ़े सवाया।

बस हमारी जियो पिंड सब तेरा कहो नानक सब तेरी वड़ियाई कोई नौ न जाने मेरा। बोलो जी वाहिगुरु। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याय फिर अंगद गुरु ते अमरदास रामदास हुई सहाय अर्जुन हर गोबिंद नौ सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण ते आइय जिस डिठे सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरै कर नौने दे आवै ताए सब थाई होए सहाय दसवां पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई होए सहाय दसां पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान करके बोलो जी। पंजां प्यारियां चौहां साहिबजादियां चालियां मुक्तियां अठियां जपियां तपियां जिन्हां नाम जपिया वंड छकिया देख चलाई तेग वाही देख डिठ कीता तिन्हां प्यारियां सचियारियां दी कमाई दा ध्यान करके खालसा दी बोलो जी। जिन्हां सिंघां सिंघणियां ने धर्म हेत सीस दित्ते बंद बंद कटाए खोपरियां लोहाइयां चरखियां ते चढ़ियारियां नाल चराए गए गुरुद्वारियां दी सेवा लई कुरबानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया सिखी केसां स्वासां नाल निभाही तिन्हां दी कमाई दा ध्यान करके

सहाय खालसे जी के बोल बाले बोलो जी। सिखा नू सिखी दान, केस दान, रहत दान, विवेक दान, विसाह दान, भरोसा दान, दाना सरदान, नाम दान, श्री अमृतसर साहब जी दे इशनान, चौंकियां झंडे बुंगे, जुगो जुग अटल, धर्म का जयकार बोलो जी।

हमारे अधूरा हूँ चल के, मेहनत की तो सरनाई जियो। मैं आसा रखी चित में, मेरा सबो दुख गवाई जियो। बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, यह जन्म तुम्हारे लेखे, कह रविदास आस लग जीवा, चिर भयो दर्शन देखे, सो कहो तरल गुर सेवियै, अहनिस सहज सुभाए, दर्शन परसे आए गुरु के, जन्म मरण दुख जाए, होवै सिफत खसम दी, नूर अरसाहूं कुरसाहूं चटी है, तुद डिठे सच्चे पातशाह, मल जन्म जन्म दी कटी है, सज्जन सच्चा पातशाह, सिर साहांदे साहो, जिस पास बैठिया सोही है, सबना दा वेसा हो, सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। वडहंस महला तीजा, सुनयो हूँ कंत महेली हो, फिर सेवे हो शब्द विचार, अवगणवंती फिर ना जानई,